देखा हाँ सुना गया नै छोई गिप्स सेंगस ले जिंदी छु क्वेली खु क्वेली तसे ले खु खु नि ते तं दिया खु नि ते कन्दि होला ने हे कन्दि आ कुछ ने थस ति उ खि जते दे छु दे छु न सतु जे खरि द उ दिशु न ते क्रिसिया त द खु हि यो जं दि हाईवे 101 इफ यू लव मी जस्ट से यस शिकोजे ने गिचिया कन्दि दि

0: यो को खे ते ते तब वो को हाथे खानी ते यून नहीं ते ने खे ये के खे यो का स्वीप तरह आने
1: गो कौन रुझा था गो कौन छुई क्या तो ना जरे दे दे चीन था चुप है चिको भी आऊंगे दे चीन का ने दे चीन जो इंटर है ये कौन नहीं अब से शोले को ये बे दे चीन था दे टीचर दे ना ना दे पर क्या तो ना दे सुन ले जो को दी आसन निकालने के दिला शेरे को के सच में जरा इन जो ताजे ले हमें बाबू ऐसे ताजे दिला रोंटे निकलने शुन्दे इंदे दे हाँ अखों ने जो आसन निकलने में कहनी दे तो कहनी का बेचूर की और ना जिसे वेदे तेरे चीन वाला को रहते दे कहनी का तो एको किंता और तो ये के लिए याने आजू कौन ये गोला
0: Leon Andrew, you only indeed that's an SEO to work in Tele, it was an equate, Massi Leon.
1: Massi, thank you.